दोस्तों, इस गीत की धुन सुनकर आप समझ गए होंगे कि ये कौन सा गीत है। लेकिन इस गीत को सुनवाने से पहले आपसे कहना चाहूंगी कि हम जहां रहते हैं, जहां जाते हैं, आसपास का वातावरण और वहां की हवाओं से हम वाकिफ हो जाते हैं, और हमारा स्वभाव भी ऐसा होना चाहिए, हवाओं फिजाओं की तरह उसमें खुशबू महका दे।

दोस्तों, ये जिंदगी भी इसी तरह छोटी ही है। आज का पल कल बन जाता है और कल का बीता हुआ लम्हा परसों बन जाता है, इसलिए ये जिंदगी दो चार घड़ी होती है, इसे हंसी खुशी से बिता देना चाहिए।

दोस्तों, जिंदगी में बहुत सारी घड़ियां आती हैं, कभी खुशी के मौके आते हैं और कभी हमें अच्छा मूड नहीं होता, वैसे लम्हे आ जाते हैं, लेकिन हम अपने आप को संभाल कर ऐसी घड़ी में रखते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष देश के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र केवल 27 महीने में तैयार हो गया। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न भागों में लगभग 54,000 नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोबो सुबियंतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोबो सुबियंतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। ये एक व्यापक ढांचा है जिसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के माध्यम से मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयातुल्ला सैयद अली खामनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। वैभव सूर्यवंशी 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के लिए डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। इसके साथ ही

0: Welcome to another edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being Saturday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company specific queries. You can call us on our telephone numbers 2331-4444, 2331-0481. And 2371-7106. And of course, do not forget to prefix the Delhi code 011 before these numbers if you are calling from out of Delhi or from your mobile phones. Well, my name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार. मार्केट मंत्रा में आप सभी का स्वागत है. आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार की हलचल पर हम नजर डालेंगे. आपके फोन कॉल्स पर पूछे गए सवालों को हम सीधे कार्यक्रम में शामिल करेंगे. आप हमें कॉल कर सकते हैं. हमारा नंबर है 2331-4444, दूसरा नंबर 2331-0481 और तीसरा नंबर 2371-7106. और दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबर से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें. हम श्रोताओं को बता दें किसी भी स्टॉक या कंपनी से जुड़ी जानकारी आपको नहीं दे पाएंगे और आपके प्रश्नों के उत्तर को लेकर के आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं विशेष हमारे मेहमान वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा जी. शिशिर जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है.
2: धन्यवाद. नमस्कार.
1: तो श्रोताओं, कार्यक्रम शुरू करने से पहले सबसे पहले हेडलाइंस.
0: Prime Minister Narendra Modi inaugurates the Crompton Greaves semi-outsourced semiconductor assembly and test facility in Gujarat. Benchmark domestic indices rise for the fourth straight week. Sensex and Nifty jumps nearly 1%. And monsoon session of parliament to begin on the 20th of this month.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सांणंद में क्रॉम्पटन ग्रीव्स सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी केंद्र का उद्घाटन किया. घरेलू शेयर बाजार लगातार चौथे सप्ताह बढ़त के साथ बंद हुए और संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा.

0: The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम गुजरात के साणंद में क्रॉम्पटन ग्रीव्स सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी का उद्घाटन किया। 7,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत तैयार की गई ये फैसिलिटी देश की टेक मैन्युफैक्चरिंग यात्रा में एक अहम पड़ाव है। साणंद पहुंचते ही प्रधानमंत्री ने हाईटेक प्लांट का दौरा किया और प्रोडक्शन प्रोसेस का जायजा लिया। पूरी तरह से क्रियान्वित होने पर इस फैसिलिटी से सालाना प्रोडक्शन क्षमता 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप्स तक होगी। इससे मेमोरी और स्टोरेज सॉल्यूशंस की बढ़ती ग्लोबल मांग को पूरा करने में भी मदद मिलेगी।
0: And Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and laid the foundation stone for several development projects worth over 1 lakh crore rupees in Rajasthan, marking a major push to infrastructure, energy, transport and employment generation in the state. During his day-long visit, the Prime Minister inaugurated the new terminal building at Jodhpur Airport. Thereafter, he dedicated the country's most modern greenfield refinery cum petrochemical complex to the nation in Pachpadra in Balotara district. He also inspected the refinery's state-of-the-art control room, interacted with engineers and technical experts, flagged off fuel tankers, and virtually laid the foundation stone for Jaipur Metro Phase 2. And in the meanwhile, we are joined in by our first caller, B.R. Nath from Delhi. Mr. Nath, welcome to the show.
2: जी नमस्कार, सवाल
3: नमस्कार। देखिए आज एक एक्सपर्ट से पूछना, नमस्कार एक्सपर्ट और आपको

0: क्या नाम TDS और AIS बने 30 जून तक अपडेट नहीं हुआ है, इनमें कुछ रह जाता है। दूसरा प्रॉब्लम ये है, बायबैक जो किया था इंफोसिस का दिसंबर में, उसको लोग डिविडेंड भी दिखाते हैं और बायबैक भी दिखाते हैं, ये AIS में और TIS, क्या नाम इसमें TIS में, ये एनोमली क्यों है?
1: देखिए, ये आयकर विभाग ने अब जो आयकर रिटर्न की प्रक्रिया पूरी शुरू कर दी है, जितने भी फॉर्म हैं ITR 1 से 7 तक वो किए गए हैं, और ITR 1 और 2 जो है वो 31 जुलाई तक, और ITR 3 और 4 जो है वो 31 अगस्त तक भरे जा सकते हैं। आपका जो दो मूल सवाल है कि ये अंतर क्यों है, अगर अंतर आपको नजर आता है तो आप आयकर विभाग से तुरंत उसका प्रश्न पूछें, उस पे आपके दोनों की सहमति, जैसे आपने कहा TIS है और AIS है, तो AIS में आपने देखा होगा कि जब आपके पास वो आता है कंप्लीट डिटेल, उसमें ये भी होता है कि एक असेसी ने उसके ऊपर रिस्पॉन्ड क्या किया, अगर असेसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो इसका मतलब है कि वो मान रहा है उसको। तो अगर कोई अंतर है तो कृपया करके आयकर विभाग से अविलंब संपर्क करें, समय चूंकि कम है, रिटर्न दाखिल करने में काफी कम समय तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ समय थोड़ा कम बचा हुआ है, तो उस हिसाब से आप तुरंत उनसे करें, जो कुछ भी विसंगतियां होंगी या जो कुछ भी अंतर होगा उसको दूर किया जा सकता है।
2: और इस बीच दिल्ली से योगेश शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेश जी, कार्यक्रम में स्वागत है, प्रश्न पूछिए।
3: आप सभी को नमस्कार, मेरा सवाल ये है कि गोल्ड बॉन्ड होते थे पहले, लोग काफी निवेश करते थे गोल्ड में, तो सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड में निवेश अच्छा माना जाता था, और अभी सडनली गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया है, और कोई ऐसा क्लेरिफिकेशन नहीं आया कि इसको क्यों बंद किया गया है, फिर कब तक ये बंद किया गया है। कई बार सुनने में आया है कि गवर्नमेंट को इससे बहुत नुकसान भी हुआ है, इसके अलग अलग रीजन हो सकते हैं, तो आपका इस पर क्या व्यू है, और क्या ऐसा सच में कुछ नुकसान होने के स्कोप था इसमें गवर्नमेंट को जो वो देख नहीं पाए उस टाइम पे?
1: देखिए, जो गोल्ड बॉन्ड लाया गया था उसके पीछे मकसद ये था कि लोग फिजिकल गोल्ड ना खरीदें और उसके वजह पे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करें, एक तरीके से कागजी गोल्ड आप इसे कह सकते हैं। और इसमें यह कहा गया था कि 8 साल के बाद जो कुछ भी बाजार की कीमत होगी उस कीमत पर आपको उसका भुगतान किया जाएगा, तो इससे सरकार के लिए एक इसके लिए फायदे का सौदा यह था कि उनको आयात करने के ऊपर जो पैसा खर्च होता है उसके लिए जो डॉलर देना पड़ता है वो डॉलर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि सरकार सीधे सीधे आयात नहीं करती, लेकिन जो भी एजेंसीज आयात करती हैं उनको डॉलर पे भुगतान करना पड़ता, तो डॉलर के ऊपर दबाव कम करने और सोने के आयात को कम करने के लिए कदम उठाया गया। लेकिन जब इसकी प्रकल्पना की गई थी तो उस समय किसी ने इस बात को सोचा नहीं था कि सोने के भाव इतने तेजी से ऊपर चले जाएंगे, आज 1.61 का है। और ये भी आप रखिए कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का मकसद जो था सरकार की उधारी का एक हिस्सा वो था, तो अब अगर सरकार की उधारी बहुत महंगी हो जाती है तो इसका नुकसान सरकारी खजाने को ही होगा। बजट के बाद वित्त मंत्रालय की ओर से स्पष्टीकरण भी दिया गया था कि इसे क्यों जारी अभी नहीं रखा गया है और इसमें किस किस तरह के परेशानी हो सकती है, सरकारी व्यवस्था को अगर आप देखें, उनके ऊपर खर्च के बोझ को देखें, तो इस वजह से सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को जो है वो बंद किया गया है। लेकिन जो लोग हैं उनके लिए जो कुछ भी देनदारी है वो पूरी की जा रही है, 8 साल का समय जब पूरा होगा उनको भुगतान होगा, हर साल 2.5% की दर से ब्याज, जो कि मूल जिस रकम पे आपने लिया था उस के हिसाब से 2.5% की दर से ब्याज मिलेगा। 5 साल के बाद आप प्री मेच्योर रिडम्पशन भी कर सकते हैं, और 8 साल के बाद जब आप पूरा रिडम्पशन करेंगे तो आपको एक भी पैसा कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना होगा। तो एक अच्छी स्कीम थी, लेकिन इसकी लागत सरकार के लिए बहुत ज्यादा थी जिसकी वजह से इसे बंद करना पड़ा है।
4: एंड आवर नेक्स्ट कॉलर इज जितेंद्र फ्रॉम जयपुर। जितेंद्र,
5: हाँ हेलो। हेलो सर। हाँ सर, एक प्रश्न था, मैंने एक महीना पहले पूछा था लेकिन शायद हम ठीक से पूछ नहीं पाए थे तो इसलिए ठीक से जवाब नहीं मिल पाया। तो जैसे एक हम न्यूज पढ़े थे राजस्थान पत्रिका में कि कुछ कंपनियों का नाम था, वो नाम तो ले नहीं सकते, इंडियन कंपनी का, कि इनका मार्केट कैप से भी ज्यादा इनका इन्वेस्टमेंट है, मतलब मार्केट कैप से भी ज्यादा इनका इन्वेस्टमेंट है, तो ये अच्छा बात है या कैसा, हम इसको कैसे कैसे रूप में लें?
1: देखिए जितेंद्र जी, मार्केट कैप क्या है? मार्केट कैप अगर बाजार पूंजीकरण को एक आम बिल्कुल आम व्यक्ति के नजरिए से सोचे तो जो शेयर की मौजूदा कीमत है और बाजार की जो में जितने शेयर उपलब्ध हैं उनको गुणा कर देते हैं तो हमारे पास एक बाजार पूंजीकरण आता है। बाजार पूंजीकरण में नियमित तौर पर बदलाव होता रहता है, बाजार ऊपर जाएगा तो बाजार पूंजीकरण ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा तो बाजार पूंजीकरण भी नीचे आ सकता है। अब आपका मूल प्रश्न है कि आपने कुछ कंपनियों के बारे में पढ़ा कि उनका जो कुल निवेश

0: है उनके बाजार पूंजीकरण से ज्यादा हो चुका है, ये एक अच्छी बात है। उनके पास बस ये ध्यान में रखना है कि उनका इक्विटी डेट रेशियो क्या है, यानी कि कितना उन्होंने कर्ज ले रखा है। अगर बहुत ज्यादा कर्ज ले रखा है और उससे उनके ऊपर ब्याज का बोझ बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि कंपनी के वित्तीय स्थिति के लिए वो अच्छी बात नहीं है। लेकिन एक अगर संतुलित वे में है तो कोई गलत नहीं है, और ये दुनिया के तमाम देशों में ऐसा होता है कि आपकी जो शेयरों की कीमत है उससे ज्यादा आप लेते हैं, वो एक लेवरेजिंग होता है एक तरीके से, इसको कहते हैं, इसके आधार पे आप बाजार से पैसा उठाते हैं। तो कितना ज्यादा, अगर बहुत ज्यादा है तो वो शायद थोड़ा सा उसके ऊपर एक नेगेटिव बात हो सकती है, लेकिन अगर समझ लीजिए कि 10-15% ज्यादा है तो उसमें कोई हैरानी या कोई भी दिक्कत की बात हमें नजर नहीं आती।
1: राइट शिशिर जी, टॉकिंग ऑफ द ओसेट फैसिलिटी इनॉग्रेशन बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी इन गुजरात इन सानंद दिस इवनिंग, यू नो दिस इज रियली हार्टनिंग। Almost 5 billion semiconductor chips capacity, annual capacity, production capacity. This is humongous, given the importance of semiconductors across electronics industries, and of course, the new technology which is coming in, AI as well. So how do you see this kind of, if we look at our dependence on the foreign countries, especially Taiwan and other countries, China, of course.
0: When you are developing a mobile handset, when you are becoming a leader in mobile handset export, you need a complete value chain. You need a complete supply chain. So first you develop the product, then you develop the component, now you need the semiconductor. So many of the companies are coming into this field, many of the projects have been approved. So with this kind of infrastructure, we are going to have a complete supply chain for the electronic goods. What we can, you can also call it as a second phase of Make in India. We started with the assembling a mobile handset, now we will have the entire components as well as the semiconductor, which is a key requirement for any electronic items. So this is going to help in that way. Second thing which you need to remember, that we have started with what we call as the chip designing, then we can go for the fabrication, and then we can go for the packaging. So on the one side, on the one hand, we are talking about the entire supply chain for electronic goods. On the other hand, we are talking about the entire ecosystem for the semiconductors. So combination of these two, after say 5 years or after say 4 years, we will be in a position to export large quantity of semiconductor chip from India, which is at this moment, you rightly mentioned that from where we are importing, whether we talk about Taiwan, whether we talk about China, or whether we talk about South Korea, because I mean recently these at least one of these country was in news because one of the key chip maker played a key role in the entire stock market thing. So we are not going to have that kind of situation, but the important thing for us that we will be becoming a good exporter, a big exporter of the semiconductor on the line of the electronic goods.
1: All right.
2: भारतीय घरेलू शेयर बाजार में लगातार चौथे हफ्ते बढ़त देखी गई, इसकी वजह कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट और ग्लोबल इंटरेस्ट रेट के माहौल के और बेहतर होने की संभावनाएं थी। इस सप्ताह की बात करें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 664 अंक यानी 0.86% बढ़कर 77,764 पर बंद हुआ। वही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 इंडेक्स 215 अंक यानी 0.89% बढ़कर 24,271 पर बंद हुआ। विस्तृत बाजार का प्रदर्शन भी घरेलू शेयर बाजार जैसा ही रहा। निफ्टी मिड कैप में 0.6% से ज्यादा की बढ़त देखी गई, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप में इस सप्ताह 2% का उछाल आया। सेक्टर के हिसाब से देखें तो रियल्टी, फार्मा और हेल्थ केयर सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले क्षेत्र हैं, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और एनर्जी सेक्टर नुकसान में देखे गए। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारी गिरावट के बाद शॉर्ट कवरिंग की वजह से जबरदस्त रिकवरी देखी गई। फॉरेक्स मार्केट में भारतीय रुपया 82 पैसे कमजोर हुआ और अमरीकी डॉलर के मुकाबले 95.22 रुपये पर बंद हुआ। हालांकि कैलेंडर वर्ष 2026 की पहली छमाही में बेंचमार्क इंडेक्स ने नकारात्मक रुख दिखाया। सेंसेक्स में 10.2% की गिरावट आई, जबकि निफ्टी 8.7% नीचे आ गया, जबकि विस्तृत बाजार का प्रदर्शन बेहतर रहा। निफ्टी मिड कैप में लगभग 2.2% और निफ्टी स्मॉल कैप में 6.5% की बढ़त देखी गई।
1: शशि जी, द फोर्थ कंसेक्यूटिव वीक ऑफ गेन्स, if we look at the backdrop of the last 4 or 5 months, ever since the Middle East or the West Asian crisis happened, are the bad days behind us, and can we look forward to greener pastures in the coming
0: just
1: years?
0: Just last week, I was talking to one of the largest mutual fund of the country, and the first line he said that the

0: worst is behind us, mm-hmm. and we are on a better path. Now, the key concern at this moment is, one is, of course, the monsoon. Of course, we are coming out from the West Asia crisis.
1: El Nino has
0: El Nino.
1: Yes.
0: So, after West Asia, the biggest concern at this moment is El Nino. Because if we go by the number, I think 40% deficit was in the month of June. And when you are entering July, of course, we are seeing good spread of rain, but we do not know that what will happen. And if I go by the IMD forecast, they are saying that it will be below normal. So that is a real concern. And why this is a concern? Because 65% of population is in the rural area. 50% of labor force is in the rural area. So when the rural economy will be in distress, then of course entire economy will be in a problem, because we will not be having what we call as the virtuous cycle, but we may have the vicious cycle. That is a concern. And market is also, at this moment, they are talking more about the West Asia crisis, but they are also concerned, little bit concerned about the El Nino, and the real impact will be after the Q1 results, which we are going to have from 11th of this month, 10th and 11th of this month.
1: Right, right.
0: So that the Q1 results will decide that what kind of direction we are going to have in the market in the month of July as well as in the month of August.
2: Absolutely.
3: Maharashtra se Mangesh phone line par hai. Mangesh ji, sawal puchhiye.
4: हाँ नमस्कार सर.
0: नमस्कार
4: सर. आईटी सेक्टर में निवेश करना अच्छा रहेगा कि आपके निवेश करना, इसके बारे में पूछना था. और युद्ध का प्रभाव कहाँ तक रहा कि खत्म हुआ, उसके बारे में पूछना था.
0: अच्छा मंगेश जी, देखिए पहला जो आपका प्रश्न है आईटी सेक्टर का, ये एक कह लीजिए कि एक अजीब सी विडंबना भी है कि बीच में हमने देखा कि आईटी सेक्टर में इसलिए गिरावट है क्योंकि एआई में जो है वो बहुत तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली थी, और फिर ये भी देखने को मिला कि आईटी सेक्टर में थोड़ी रिकवरी हुई क्योंकि एआई सेक्टर को लेकर के कंसर्न्स कुछ अलग तरीके के आ गए. फिर हमारे पास ये बयान भी आता है कि अभी के समय में भी पारंपरिक आईटी कंपनियों का भविष्य है. तो मुझे लगता है कि अगले छह महीने से साल भर के बीच में आईटी कंपनियों को लेकर के ये असमंजस की स्थिति और अनिश्चितता की स्थिति थोड़ी बनी रहेगी. लेकिन अगर आप 3 साल या 5 साल के निवेश के नजरिए से सोचें, आप साल भर की बात मत करिए, 3 साल के निवेश के नजरिए से सोचिए, तो आईटी के वैल्यूएशंस अभी नीचे हैं और आपके लिए खरीदने का एक अच्छा मौका है. एक ही सुझाव है, किस्तों में खरीदें, एक साथ सारा पैसा ना लगा दें. दूसरा आपका प्रश्न था कि पश्चिम एशिया के संकट के बाद की स्थिति का क्या है. देखिए पश्चिम एशिया के संकट को लेकर के कह सकते हैं कि शांति समझौता हुआ है, उसके बाद तकनीकी दौर की बातचीत चल रही है. हम उम्मीद यही करेंगे कि सब कुछ अच्छा हो, सभी लोग उम्मीद करेंगे और खासतौर पे बाजार से जुड़े लोग तो खासतौर पे चाहेंगे. लेकिन बीच बीच में ऐसे से कुछ खबरें आ जाती हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिससे कि इस शांति समझौते पे कुछ समय के लिए प्रश्नचिन्ह भी लग जाता है. तो अनिश्चितता थोड़ी है और उस अनिश्चितता को मानसून ने भी कुछ हद तक बढ़ाया है. तो मेरे ख्याल से अभी शेयर बाजार के लिए कहते हैं ना कि चैन से सांस लेने का समय नहीं है. वहां पर अभी भी घबराहट की थोड़ी स्थिति हमें देखने को मिलेगी. हाँ, आप रैली जो देख रहे हैं, ये 4 सप्ताह हमने लगातार 4th सप्ताह देखा कि शेयर बाजार में तेजी आई. उम्मीद करते हैं कि अगले सप्ताह भी थोड़ी स्थिति बेहतर रहेगी, लेकिन पहली तिमाही के नतीजों के बाद शेयर बाजार में शायद थोड़ी हलचल अलग तरीके की देखने को मिलेगी.
2: राइट, नेक्स्ट कॉलर इज शंकर फ्रॉम भोपाल. शंकर जी
5: नमस्कार.
0: नमस्कार.
5: माय क्वेश्चन अबाउट फॉरेन रुपी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डॉलर. क्या अभी वी कैन एक्सपेक्ट फर्दर स्लाइड डाउन इन नियर फ्यूचर बिकॉज ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इश्यू, और वी कैन नाउ एक्सपेक्ट इट टू स्टेबल एट अराउंड 95 फॉर सम मोर टाइम. व्हाट इज योर व्यू ऑन डॉलर?
0: ओके शंकर जी, इफ यू सी द नंबर्स ऑफ द डेट इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आफ्टर वी हैव सीन दिस टैक्स बेनिफिट गिवन बाय द गवर्नमेंट, वी हैव सीन गुड इनफ्लो इन टर्म्स ऑफ दैट, एंड दैट इज गिविंग सम सपोर्ट टू रुपी विच वॉज बिलो 95. सो एट दिस मोमेंट आई थिंक फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ और 3 मंथ वी विल हैव सम मोर स्टेबिलिटी. बट एट द सेम टाइम इफ देर इज एनी काइंड ऑफ डिसरप्शंस इन द वेस्ट एशिया सिचुएशन, देर मे बी मोर डिमांड फ्रॉम द ऑयल मार्केटिंग कंपनीज फॉर क्रूड परसेज, देन इट कैन हैव सम प्रॉब्लम. बट एट दिस मोमेंट आई डोंट थिंक एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 months मोर स्लाइडिंग ऑफ द रूपी, एंड इट विल बी

0: below 95 or between 94 and 95.
1: Right, and moving on to the U.S. markets, the United States stock markets remained closed yesterday in observance of Independence Day. Meanwhile, major U.S. indices finished the holiday shortened week with solid gains. The Nasdaq Composite Index surged 2.1%. The Dow Jones Industrial Average rose by 2% during the week to close at a record high of 52,900. The S&P 500 gained 1.75% during the week. Investors cheered the weaker than expected U.S. jobs data and are now looking for a softer inflation numbers, reinforcing expectations that the Federal Reserve will keep interest rates unchanged at its policy meeting scheduled for the end of this month. Shishirji, softer inflation number expectations from the U.S., the public over there, and of course the hawkish Fed. Your views on that?
0: I think that's something, expectation is there, but going by the current price movement, and especially after this entire West Asia thing, I don't think that the inflation will be much softer there, and that is why Federal Reserve is very much cautious. And the commentary which we have seen, which we have heard from the Federal Reserve, is something which we have to keep in mind. And the month and meeting of Federal Reserve will also determine, but softer inflation, not much fall in inflation one can expect in the US.
1: Right. And in some other news, the monsoon session of Parliament will commence on the 20th of this month and continue till the 13th of August. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju today said that President Draupadi Murmu has approved the government's proposal to convene the session from the 20th of July. In a social media post, Mr. Rijiju said that the session will focus on meaningful debates, discussions and decisions on issue of national importance. You are tuned in to the Market Mantra program on Akashwani. Listeners, you can call us on our telephone numbers 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106, and do not forget to prefix 011 before these numbers, the Delhi STD code if you are calling from out of Delhi or from your mobile phones. Meanwhile, we are joined in by our next caller, Tapash from Kolkata. Tapash.
2: Tapash Chakravarti. Actually, last week that Kolkata zone now started. Actually, last 1 year we are unable to contract actually. पतनी मैंने क्यों इधर टेलीकास्ट नहीं हुआ था, क्योंकि आपने भी कैलकाटा से कोई कॉलर आपको मिला क्या, नहीं मिला आपको, ये नहीं है. तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है, मैं सीनियर सिटीजन हूँ तो मेरा डिविडेंड और इंटरेस्ट के ऊपर ही डिपेंड करना पड़ता है. तो सर आप सुन रहे हैं ना?
0: हाँ जी, बोलिए बोलिए.
2: हाँ, तो उसमें मैं अभी क्या किया, बॉन्ड खरीद रहा हूँ. बॉन्ड में 10-11% मेरे को इंटरेस्ट देता है और मैं वो इंटरेस्ट में चल रहा हूँ. तो आप मेरे को बताइए ये ठीक है क्या, ये बेसिकली ए प्लस और ए कैटेगरी बी प्लस ऐसा आता है. तो मैं उसमें इंटरेस्ट मेरे को मिल रहा है महीना में
0: जी जी,
2: और मेरे को इसमें चल रहा है. तो सर ये ठीक ठाक है क्या, ये जरा सा आप बोलेंगे तो अच्छा है.
0: नहीं देखिए, आपका फैसला अच्छा है, बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जब आपने कहा कि आप ट्रिपल ए और ट्रिपल बी की बात करें तो ट्रिपल ए के नीचे तो बिल्कुल मत जाइएगा. अगर बॉन्ड लेना भी हो तो आप कोशिश करिए कि जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, सरकारी कंपनियां हैं, उनके बॉन्ड्स को अगर आप लें तो वो ज़्यादा बेहतर है. म्यूचुअल फंड में भी कुछ जो खास तौर पर डेट फंड हैं उसमें आप लगा सकते हैं ताकि आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो. और कुछ पैसा मेरी सलाह होगी कि डाकघर में जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स है उसमें ज़रूर रखिए. वो आपके लिए एक बहुत बड़ा एक हेजिंग है आपके लिए, जिसको कहते हैं ना, सुरक्षा आपको देगा. वैसे बॉन्ड में कहते हैं कि काफ़ी हद तक सुरक्षा तो रहता है, रिस्क तो है, जोखिम है वहाँ भी, लेकिन और भी बेहतर करना हो तो थोड़ा पैसा 15-20% आपकी जितनी भी कमाई है वो आप डाकघर के सीनियर सिटीजन में ज़रूर रखें.
1: And moving on to oil now, the global crude oil prices are hovering near the levels last seen before the West Asia conflict erupted in late February, as traffic through the Strait of Hormuz has improved amid progress in the US-Iran talks. A spokesperson for Qatar's foreign minister said in a social media post that the talks made positive progress on the matters related to the memorandum that halted the war in June. During the week at the end

0: Intercontinental Exchange, that is ICE, Brent crude September futures dropped nearly 0.7% to settle at $72.12 per barrel, while the West Texas Intermediate WTI August futures declined 0.6% to end at $68.82 per barrel. Shishirji, of course, you know, the decline from almost near about $120 to $72. With the crude is on expected lines, but we are talking here of the energy sector stocks. What do you think of that when we look at this crude sector?
1: There are two parts. One, you rightly mentioned about the slide in the crude oil prices. Mm. And at this moment, we are seeing some good performance by the oil marketing companies in terms of what we call as the under recovery. Their under recovery has come down. Mm-hmm. So that is one positive for them. And we should also remember that during this period, they bought large quantity of crude at a very high price. So until unless that supply is exhausted,
0: yes,
1: they will not be in a very comfortable position. So their under recovery has come down, but that has not come down much below than what we are saying about the pre-war release. So at this moment, I believe that the OMC companies, there should be some kind of caution, at least for the next 1 month. Mm. And after this supply is exhausted, and if the prices of Indian basket of crude is hovering around say 70-75, then they will be in a better position in second quarter. So somebody, if somebody is planning to make put money in the oil marketing company stock, they should wait at least for one month or 2 months, then they can plan for making fresh investment into that.
0: Right.
2: गुजरात में चल रही विभिन्न रेलवे परियोजनाओं की समीक्षा के बाद अहमदाबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्वास जताया है कि अहमदाबाद और मुंबई को जोड़ने वाला पूरा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 2029 के अंत तक तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और गुजरात खंड का 80% काम पहले ही पूरा हो चुका है। सूरत से बिलिमोरा को जोड़ने वाला पहला परिचालन खंड अगले साल खुलने वाला है। सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए प्याज की खरीद मूल्य में 13% की बढ़ोतरी की है। इसका खरीद मूल्य 1875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर अब 2125 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि संशोधित खरीद मूल्य आज से प्रभावी हो गए हैं। मंत्रालय के अनुसार इससे प्याज किसानों को बेहतर लाभ मिलेगा और साथ ही बफर खरीद प्रयासों को भी सहायता मिलेगी। शशि जी, एक प्रश्न आपसे पूछना मैं चाहूंगा कि आने वाला जो सप्ताह है उसमें बाजार को लेकर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, खासतौर पर ऐसे समय में जब आपने Q1 रिजल्ट की बात की है, पहली छमाही भी गुजर चुकी है।
1: देखिए, अगले सप्ताह जो हमारे लिए महत्वपूर्ण जो क्यू होगा वो हमारे लिए रिजल्ट्स ही हैं, जो कि 10 तारीख से शुरू होता है। तो उसके अनुमान में कुछ नए गतिविधियां हमें देखने को मिल सकती है, तो बाजार थोड़ा सबड्यूड रहेगा। जो हमने 4 सप्ताह से तेजी देखी है, तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी गिरावट हम देखेंगे, एक सबड्यूड माहौल रहेगा। नतीजे जैसे जैसे आते जाएंगे अगले 20-25 दिनों के भीतर भीतर, उसके बाद बाजार में गतिविधियां और तेज होगी। लेकिन अगले सप्ताह मुझे लगता है कि थोड़ी सी हलचल उस तरीके की देखने को नहीं मिलेगी जो हमने पिछले 2 सप्ताह के दौरान
2: देखी। तो छोटे निवेशकों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए फिलहाल? अभी
1: किस्तों में शेयर खरीदिए, जहां कहीं भी आपको गिरावट अच्छी दिख रही है वहां पर आप किस्तों में खरीदिए, लेकिन बहुत ज्यादा गिर गया उसको मत खरीदिए। जो गिरे हैं, थोड़े गिरे हैं, उनमें आप किस्तों में खरीदिए और किस्तों में मुनाफा कमाना भी मत भूलिए।
0: वेरी क्विक कमेंट फ्रॉम शशि जी, फ्रॉम यू, हाउ डू यू सी द स्मॉल कैप?
1: Are going on a very high or going on a very low. So personally, I am not very small cap is not very favorite for me. I would rather go for the mid cap where some of the companies are very good.
2: Right. शिशिर जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने, श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी, धन्यवाद।
0: Thank you so very much, शिशिर जी. And before we close, a reminder of the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi inaugurates the Crompton Greaves semi-outsourced semiconductor assembly and test facility in Gujarat. Benchmark domestic indices rise for the 4th straight week. Sensex and Nifty jumps nearly 1%, and the monsoon session of Parliament to begin on the 20th of this month. And that's all we have in this edition of Market Mantra. This is Nishit Kumar along with Nikhil Kumar saying goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वक्त हो चुका है ठीक 11:41 और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत का। और गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं यानी आपका दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार पुरखलूस आदाब। गीत मेरे मनमीत की इस दिलकश महफिल में हम आपके लिए लेकर आते हैं सुनहरे दौर के उन चुनिंदा नगमों को जिसे आप बेहद पसंद करते हैं, जो आपके दिल के बेहद करीब है। और कहते हैं कि इश्क की शुरुआत जितनी मीठी होती है उतनी ही अनिश्चित भी। दिल में नई नई धड़कनें जन्म लेती हैं, सपने आंखों में सजने लगते हैं और फिर एक सवाल बार बार मन में दस्तक देता है, आगे क्या होगा। आज हम आपको लिए चलते हैं 1962 के उस सुनहरे दौर में जब संगीत सीधे दिल से निकलकर दिल तक पहुंचता था। उस दौर की एक बेहद नाजुक रोमांटिक और सदाबहार पेशकश फिल्म हरियाली और रास्ता का ये यादगार बेहद खूबसूरत गीत। इस गीत को अपनी जादुई आवाज से अमर बनाया है लता जी ने और दर्द भरी आवाज के बादशाह मुकेश साहब ने। गीत के बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी साहब ने और इसे अपने मधुर धुनों से सजाया है संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन साहब की। तो आइए इसी फिल्म का ये बेहद खूबसूरत नगमा हम आपको सुनवाते हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत मेरे मनमीत में।

मुकेश साहब और लता जी की बेहद खूबसूरत आवाजों में यह नगमा था फिल्म हरियाली और रास्ता से। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत मेरे मन मीत की ये बेहद खूबसूरत महफिल जिसे लेकर हाजिर हूं मैं फेरोज। दिल जब किसी अनकही चाहत में डूब जाए तो बेचैनी भी एक खूबसूरत एहसास बन जाती है। आज अब हम आपको लेकर चलते हैं 1958 के उस दौर में। उसी दौर में एक फिल्म आई थी बेहद खूबसूरत यहूदी, और जहां भावनाओं को सुरों का अनुपम बेहद खूबसूरत साथ मिलता। गीता दत्त और लता जी की बहुत ही खूबसूरत आवाजों में इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा है जो आज भी दिल को छू जाती है। शरद की भावनाओं पूर्ण शब्द और शंकर जयकिशन का अमर संगीत इस रचना को और भी बेहद खूबसूरत बना देता है। तो आइए इस बेहद खूबसूरत सफर पर चलते हैं। एक और बहुत ही प्यारा नगमा हम आपको सुनवाते हैं, प्यार की नाजुक धड़कनों और मधुर एहसासों से सजा ये अनमोल गीत बेचैन दिल खोई सी नजर आपके लिए।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 11:53 और 15 सेकंड। महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा गीत मेरे मनमीत की, और गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूं मैं, यानी आपका दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को एक बार फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलूस आदाब। दोस्तों कहते हैं कि इश्क की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें हर बात जबां से नहीं की जाती। कभी एक मुस्कान, कभी झुकी हुई नजर, तो कभी एक मासूम सा इशारा दिल की पूरी दास्तान बयान कर देता है। आज का हमारा अगला नगमा भी कुछ ऐसा ही है। खामोश इजहार मोहब्बत की मीठी सी कहानी सुनाता है और दिल में उतर जाता है। और यह नगमा है सन 1964 की सुपरहिट फिल्म कश्मीर की कली से। ये सदाबहार युगल गीत मोहम्मद रफी साहब और आशा भोसले जी की बहुत ही सुरीली आवाजों में बेहद खूबसूरत दिल में उतर जाने वाला है। एसएच बिहारी यानी शमसुल हुदा बिहारी साहब के खूबसूरत बोल और ओपी नैयर साहब के चुलबुले मधुर संगीत ने इसे हमेशा के लिए यादगार बना दिया। तो आइए मुस्कुराइए और प्यार के उन नाजुक इशारों को महसूस कीजिए जो शब्दों से कहीं ज्यादा असर छोड़ जाते हैं।

फिल्म कश्मीर की कली के इसी नगमे के साथ मुझे यानी फेरोज को अब दीजिए इजाजत गीत मेरे मनमीत से। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद अंजलि रहेंगी आपके साथ लेकर अगला प्रोग्राम। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

0: चिप तैयार होंगी। श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र केवल 27 महीने में तैयार हो गया। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियंतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्राबोवो सुबियंतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने नई सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग सुविधा के उद्घाटन को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत का एक नया कदम बताया। इस सुविधा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सानंद में किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि एक टेक पावर हाउस के तौर पर भारत की यात्रा में एक नया मील का पत्थर है। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। ये एक व्यापक ढांचा है जिसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के माध्यम से मादक पदार्थों के उपयोग को रोकना है। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत भारतीय सेना के 651 कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में कांगो में संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थिरीकरण मिशन मोनुस्को के वरिष्ठ अधिकारी, बल मुख्यालय के प्रतिनिधि, सैन्य कमांडर और अन्य विशिष्ट अतिथि उपस्थित थे। मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। इंग्लैंड ने 191 रन के लक्ष्य को 19 ओवर में 6 विकेट खोकर पूरा कर लिया। इससे पहले भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 190 रन बनाए थे। वैभव सूर्यवंशी 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के लिए डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi inaugurated CG Semi State-of-the-Art Outsourced Semiconductor Assembly and Test OSAT plant in Sanand, Gujarat. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Earlier, Prime Minister Modi inaugurated and laid

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़

नमस्कार, आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर मैं हूं आपके साथ रश्मि कुकरेती और कार्यक्रम वही आपका अपना पानी पर लिखी कहानी, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसी कहानियां जो दिल को छू जाती हैं। इसी श्रृंखला में मैं आपके लिए लेकर आई हूं मेरी ही कलम से निकली एक कहानी जिसका शीर्षक है वापसी। आइए सुनते हैं।

0: डॉक्टर दिवाकर आज किधर की ओर?
1: अस्पताल की नर्स ने डॉक्टर दिवाकर से पूछा।
0: बस घर जा रहा हूँ माँ के पास,
1: ये कहकर डॉक्टर दिवाकर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी।
0: कुछ ही देर में गाड़ी शहर से बाहर थी और धूल धुआं छोड़कर सामने नजर आ रहे थे हरे भरे पहाड़। शुरू हो रहे थे जंगल, ऊंचे पहाड़ों के बीच और बीच में से जाती वो सड़क जिसमें खुली खिड़की से आ रही थी बर्फीली हवा। उन्होंने अपनी जैकेट को कस के बंद कर लिया। हवा की ताजगी उनके मन को छूने लगी। पत्थर उन्हें हमेशा से पसंद थे और पत्थरों से बने वो पहाड़ भी। उसकी खूबसूरती, वहाँ की सर्दियाँ, वहाँ के जाड़े,

याद आने लगे बचपन के वो दिन, जब वो दौड़ते हुए दूर पहाड़ पर बने छोटे से प्राइमरी स्कूल के लिए निकल जाते थे और रास्ते में प्यास लगती थी तो छोटे छोटे जंगली आंवले खा लेते थे और फिर पहाड़ी सोतों से निकलता मीठा पानी पीते तो आंवले की मिठास और बढ़ जाती। वही थी उनकी पहाड़ी मिठाई। ये जंगल तब भी जानवरों से भरा हुआ था लेकिन उन्हें डर नहीं लगता था। वो अपनी माँ के साथ पलाश और बुरांस के वनों में घूमता रहता। दिवाकर था ही अपनी माँ का दाहिना हाथ। दो ही तो प्राणी थे घर में। अनाज पीसती माँ का अथक परिश्रम देखकर किताब पढ़ता दिवाकर सोचता, कब करेगा वो अपनी माँ की परेशानियों को दूर। उस अनाज को देखकर कितनी ही गौरैया आंगन में उतर आती। अभी भी वो दिन उसकी यादों में बसे थे। अब तो वो कल्पना भी नहीं कर पाता था कि इन्हीं पगडंडियों पर दौड़ते भागते हुए वो स्कूल पहुंच जाता था और कंधे पर रहता था उसका बस्ता। माँ पीछे से देखती रहती जब तक कि वो आंखों से ओझल नहीं हो जाता। उन दिनों ना तो कोई फोन था, बस मन में ये संतोष था कि उनका बेटा स्कूल पहुंच गया है। उसका जीवन बहुत संघर्षों से भरा था पर माँ के आंचल में संघर्ष महसूस ही नहीं होता था। उसे तो हमेशा छांव

गाड़ी पहाड़ी रस्तों पर हिचकोले खाते खाते उसको अपना घर दिखाई देने लगा, अपना गांव दिखाई देने लगा और साथ ही दिखाई देने लगा छोटा सा बाग, घर के सामने अखरोट के वृक्ष और पहाड़ी बेरियों की झाड़ियां। ये वो बगिया थी जहां पर बरसों पहले उसके बाबा ने पेड़ लगाए थे। आज उनके फल टूट टूट कर गिरते थे, देखकर उसका मन खुश हो गया। उसने दौड़कर एक फल तोड़ा और खाता हुआ घर की ओर बढ़ चला। रास्ते में उसको माँ दिखाई दी, बोली, अरे मैंने वहीं से देख लिया था, और तुम यहाँ से क्यों खा रहे हो, घर में तो बहुत सारे फल हैं। वो हंस पड़ी, उसने माँ को गले लगा लिया और गोदी उठा लिया। अरे मुझे जमीन पर रखो भाई। वो दोनों घर की ओर चल पड़े। डॉक्टर दिवाकर ने ज्ञान विज्ञान की राह चुनी थी। उनके बाबा कहते थे दिवाकर को बहुत पढ़ना है,

इस बात को कितने वर्ष बीत गए, जब कड़ी मेहनत से उसने MBBS की परीक्षा पास की थी तो पूरे गांव का सर गर्व से ऊंचा हो गया था। सबको बहुत सी उम्मीदें थी दिवाकर से। सब कहीं ना कहीं सोचते थे गांव का लड़का डॉक्टर बना है, कल को वो उन्हीं का इलाज करेगा, क्योंकि गांव में दूर दूर तक अस्पताल की सुविधा नहीं थी। MBBS करके और आगे की डिग्री हासिल करके आज डॉक्टर दिवाकर दिल्ली के जाने माने सर्जनों में से माने जाते हैं। सारी भौतिक सुख सुविधाओं के बीच में उसे अपना घर बहुत याद आता था। उन्होंने बहुत कोशिश भी की थी कि अम्मा को दिल्ली लेकर आ जाएं, पर अम्मा ने मना कर दिया। बोली, नहीं बेटा, ये घर हमारे पुरखों की धरोहर है। अगर मैं भी तुम्हारे साथ चली गई तो यहां कौन रहेगा? देखो ना, वैसे भी सब लोग तो घर छोड़कर जा ही रहे हैं शहरों की ओर। लेकिन माँ, मैं आपको कब तक यहां अकेला रहने दूं? दिवाकर ने कहा था। नहीं बेटा, मैं यहीं रहूंगी। तुम आते जाते भी रहोगे तो फिर यहाँ अकेलापन भी नहीं लगेगा। ये पहाड़, ये जंगल, ये सारे मेरे ही तो हैं। उसे वो पुरानी बातें याद आ रही थी। जब डॉक्टर दिवाकर ने माँ की ओर देखा तो लगा माँ का चेहरा थोड़ा और पीला हो गया है, वो और कमजोर दिख रही थी। बोले, माँ तुम कितनी कमजोर हो गई हो, अब मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा, इस बार अपने साथ दिल्ली लेकर ही जाऊंगा। अरे, अभी तो तू आया है और आज ही जाने के लिए कहने लगा। घर पहुंचकर लकड़ी के चूल्हे पर बनी मोटे अनाज की रोटी, हरी चटनी और घी के साथ खाकर उसका मन और आत्मा तृप्त हो गई। दोनों माँ बेटे बतियाते रहे और कब नींद की गोद में सो गए पता ही नहीं चला। अगले दिन जब सुबह दिवाकर उठा तो पास ही के मोहन चाचा के घर चला गया, पर वहां कोई नहीं था, न कोई आवाज सुनाई दी। वापस घर लौटकर पूछा, माँ मोहन चाचा किधर है? क्या मोहन चाचा का परिवार इन छुट्टियों में गांव आया हुआ है? अरे नहीं, उन्होंने अपना घर किराए पर दे दिया है। किराए पर? यहाँ? किसको? अंकिता को। अंकिता? दिवाकर के दिमाग में घंटी सी बजी। उसके बचपन की एक साथी थी अंकिता। दोनों मिर्ची के खेत में मिर्च खाने की शर्त लगाते थे और अक्सर वो शर्त हार जाया करता था। अपने बचपन के उस खेल को सोचकर वो मन ही मन हंस पड़ा। वो जानता था कि ये वो अंकिता नहीं हो सकती। ये लो बेटा, आ गई अंकिता, माँ ने कहा। उसने सर उठाया तो साड़ी में एक दुबली पतली सी लड़की लंबी चोटी किए सामने से चली आ रही थी। माँ ने चाय का कप दिया, बेटा चाय पी लो। अरे नहीं चाची, मैं अभी स्कूल जा रही हूँ। अरे थोड़ी देर तो बैठ, आकर मिलूंगी, हंसकर वो निकल गई। दिवाकर ने सीढ़ियों से देखा और अनदेखा कर दिया। उसने प्रश्न सूचक नजरों से अपनी माँ की ओर देखा तो उन्होंने बताया कि अंकिता पड़ोस के गांव की लड़की है और बेटा ये जो नया स्कूल खुला है ना, सरकारी स्कूल, उसी में टीचर लगी है, तभी तो इधर आ गई। वहीं पढ़ाती है और यहाँ किराए पर रहती है। बहुत अच्छी लड़की है, याद है ना तेरे साथ पढ़ती थी बचपन में, तेरी ही तो क्लास में थी। मेरी बहुत मदद करती है बेचारी। पिछले हफ्ते भी तेज बुखार में तप रहे एक बच्चे को लेकर रातों रात शहर गई थी। यहाँ कोई

है नहीं जो देखता उसे। शुक्र करो अंकिता बच्चे को लेकर गई और उसकी जान बच गई। अरे दिवाकर तू जा कहाँ रहा है, बात तो सुन ले। दिवाकर बोला, माँ मैं कल्याण के यहाँ जा रहा हूँ। अपने दोस्त कल्याण से बातें करते करते दिन कैसे बीत गया दिवाकर को पता ही नहीं चला। वो कल्याण से मिलकर नदी की ओर निकल गया। तभी दूर से घंटे की आवाज सुनाई दी। उसे लगा किसी मंदिर से ये आवाज आ रही है, पर देखा तो ये आवाज तो स्कूल से आ रही थी। देखा कि खुली कक्षा में ब्लैक बोर्ड लगा है, कोई टीचर बच्चों को पढ़ा रही थी। पास आया देखा तो अंकिता ही थी। फिर वो लंबे लंबे डग भरते हुए घर की ओर निकल गया। सोचा सामने ही पहाड़ी पर तो छोटा सा मंदिर है, क्यों ना देवता के दर्शन करता हुआ जाए। पुजारी बाबा भी तो वहीं रहते थे और वहीं रहता था उनका छोटा सा परिवार। शांत सलोने मंदिर में कोई दिया जला गया था। धूप की खुशबू चारों ओर फैली हुई थी। पीछे मुड़कर देखा तो पंडित जी का छोटा लड़का केशव दिखाई दिया। अरे दिवाकर भैया नमस्ते, कब आए? कल शाम को ही आया हूँ केशव, कैसे हो तुम? पिताजी कहाँ है? ये सुनते ही केशव वहीं थम गया। पिताजी तो इस बार, कहकर उसने सर झुका लिया। दिवाकर का दिल धक से रह गया। वो डॉक्टर जो दिन रात मौत को देखता था, दिन रात उसका सामना करता था, पता नहीं क्यों ये वाक्य उसके दिल में तीर सा घुप गया। वो दयालु बाबा, वो पुजारी और उनके साथ बचपन के बिताए वो दिन उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। डॉक्टर दिवाकर ने आगे बढ़कर केशव का कंधा थपथपाया, इधर उधर की बातें की और गांव लौट आए, पर एक गहरी उदासी उनके मन पर छा

0: क्या पुजारी काका ने कोई दवाई वगैरह नहीं ली थी?
1: बेटा यहाँ कहाँ दवाई, ना यहाँ कोई छोटा मोटा डॉक्टर है, ना ही कोई वैद्य, बस प्रकृति ही माँ है, वही डॉक्टर वही वैद्य। तुम तो जानते हो बेटा, पंडित जी अस्थमा के रोगी थे और कोरोना के बाद

बहुत झटका खा गए थे। किसी कथा के लिए गांव से दूर शहर में गए थे। बस वहीं उनको दिल का दौरा पड़ा और क्या कहें बेटा, कहने को कुछ नहीं। दिवाकर को अब समझ में आया, उसके मन में अपनी माँ के स्वास्थ्य के लिए हमेशा चिंता रहती थी। वो जानता था पहाड़ों के अकेलेपन में उसकी माँ। माँ, मैं अब तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा, इस बार दिल्ली लेकर ही जाऊंगा। मैं कैसे जाऊंगी बेटा, अगर मैं चली गई तो अंकिता तो यहाँ अकेली रह जाएगी ना। दिवाकर ने नजरें उठाकर देखा तो अंकिता सामने खड़ी थी। ये मेरा बहुत ध्यान रखती है बेटा, तू चिंता मत कर, मुझे कुछ नहीं होगा। माँ, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। तभी अंकिता बोली, ये लो चाची, मैं आपकी दवाइयां लेकर आ गई हूँ। अरे दवाइयां? दवाइयां मैं लेकर आया हूं ना, दिवाकर बोला। अरे नहीं, ये तो आयुर्वेदिक टॉनिक है जो मैं चाची के लिए लेकर आई हूँ। आप दिल्ली जाओगे ना तो ये भी लेकर जाना। ठीक है अंकिता बेटी, माँ बोली, अब तू भी यहीं बैठ, यहीं खाना खा ले। कमरा जैसे भरा भरा सा लगने लगा, खिला खिला सा। दिवाकर वहीं बैठ गया पसंदीदा आराम कुर्सी में। उसने आंखें बंद कर ली और बस रसोई में काम करती अपनी माँ को देखने लगा।

उसके मन का तनाव और दिमाग की चिंताएं कपूर बनकर उड़ गई थी। बेटा बहुत रात हो गई है, जरा अंकिता को घर तक तो छोड़ाओ। वो आगे आगे निकल पड़ा और अंकिता पीछे। गांव कितना सुनसान हो गया है, पहले जैसा समय होता तो छोड़ने जाने की जरूरत ही नहीं होती। नहीं नहीं, मैं अकेले ही चली जाऊंगी, आप कष्ट मत कीजिए। नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, यहाँ सुविधाएं भी तो नहीं है, सब कुछ बहुत दूर है। सही कहा आपने, दुकान से अस्पताल, स्कूल, बाजार।

हजार दूर दूर तक पैदल चलना पड़ता है, पर इस वजह से कोई अपना घर तो नहीं छोड़ देता ना। मैं तो यहीं पर हूँ, मेरी दुनिया यही है और मेरा स्कूल भी यहीं, और हाँ चाची जी भी तो यहीं है। पर मेरा अस्पताल तो दिल्ली में है ना, दिवाकर बोले। आप यहाँ भी तो अस्पताल खोल सकते हैं डॉक्टर दिवाकर, अंकिता ने धीरे से कहा। वो चुप रह गया, बोला लीजिए आपका घर आ गया। डॉक्टर दिवाकर वापस मुड़े तो एक जोड़ी आंखें अंधेरे में उनका पीछा करती रही। अगले दिन डॉक्टर दिवाकर को वापस दिल्ली जाना था। वो जानते थे कि अस्पताल के कई मरीज उनका इंतजार कर रहे होंगे, बहुत सा काम बाकी था। माँ लगी थी सामान बांधने में, अपने बेटे के लिए अपने हाथ से बनाया गया कितना ही खाने पीने का सामान गाड़ी में रख दिया था। जब डॉक्टर दिवाकर अपना सूटकेस गाड़ी में रखने आए तो देखा साथ में अंकिता भी खड़ी है और माँ की मदद कर रही है। पता नहीं क्यों उनके मन के एक कोने में संतोष भर गया। एक मन जो हमेशा यहीं रहता था इन्हीं घाटियों में, उस मन में घाटियों की ठंडक उतरने लगी। वो लंबे लंबे कदम बढ़ाता हुआ गाड़ी की ओर निकल गया और दरवाजा खोल दिया। ध्यान से जाना बेटा, माँ ने कहा। डॉक्टर दिवाकर ने माँ के चरण छुए। माँ क्या तुम सच में साथ नहीं आओगी? माँ मुस्कुरा दी, बोली मेरी जगह वो नहीं है बेटा, और हंस पड़ी और मुस्कुरा दी। डॉक्टर दिवाकर की नजरें माँ के पीछे खड़ी अंकिता से टकराई, बोले सोचता हूँ अस्पताल की नौकरी छोड़कर यहीं पास में अपना एक छोटा सा क्लिनिक खोल लूँ। माँ यहाँ के लोगों को भी तो मेरी जरूरत है। उनकी नजरें फिर अंकिता से मिली, दो बड़ी बड़ी आंखें जमीन को देख रही थी। इधर माँ कहे जा रही थी, बेटा ये तो बहुत अच्छा है, ये तो तुम्हारा अपना घर है, तुम्हारी अपनी धरती, तुम्हारा अपना गांव, तुम्हारी जरूरत है यहाँ। बच्चे बाहर पढ़ने तो जाते हैं पर यहाँ कोई लौट कर नहीं आता, उसके बाद बस शहरों में बस जाते हैं। काश वो वापस आते अपने गांव की ओर, यहाँ आकर डॉक्टरी करते। अगर तुम यहाँ आओगे तो पता नहीं कितने लोगों के प्राण बचेंगे। डॉक्टर दिवाकर ने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि वो वापस आएंगे। उन्हें सामने अपना एक सुनहरा भविष्य दिखलाई दे रहा था। बोले माँ मैं लौट कर आता हूँ। माँ और अंकिता के चेहरे पर मुस्कुराहट थी।

तो दोस्तों, ये थी कहानी वापसी जिसे मैंने आपके लिए लिखा था। दोस्तों, कितनी बार ऐसा होता है कि बच्चे घर से निकल कर जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में डॉक्टर बनते हैं और उनके अपने गांव तरस जाते हैं आधारभूत मेडिकल सुविधाओं के लिए। हालांकि कितने ही ऐसे डॉक्टर घर वापस आना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो अपने गांव में ही प्रैक्टिस करें, लेकिन कुछ ही डॉक्टर ऐसे होते हैं जिनके मन में ये ख्याल आता है कि हमारी जरूरत हमारे घर में है, हमारे अपने गांव में। ऐसी ही थी ये कहानी डॉक्टर दिवाकर की, जो वापस अपने गांव आए और अपने गांव वालों के लिए उन्होंने काम किया। और इसी के साथ मैं ये कार्यक्रम यानी पानी पर लिखी कहानी से चाहती हूँ आज्ञा। रश्मि कुकरेती आपसे कहती है नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी

0: वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र केवल 27 महीने में तैयार हो गया। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रो केमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। गृहमंत्री अमित शाह ने नई सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग सुविधा के उद्घाटन को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत का एक नया कदम बताया। इस सुविधा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सानंद में किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि ये टेक पावर हाउस के तौर पर भारत की यात्रा में एक नया मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोबो सुबियंतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोबो सुबियंतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के पहले 5 दिनों में 1,45,00,000 वोटरों में से 32% से ज्यादा लोगों को गणन प्रपत्र बांटे गए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भरे गए प्रपत्रों में से सिर्फ 1% से ज्यादा को ही डिजिटाइज किया गया है। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के अनुसार शनिवार तक कुल 46,54,989 गणना प्रपत्र बांटे गए और 1,46,438 प्रपत्र डिजिटाइज किए गए। SIR प्रक्रिया 29 जुलाई तक चलेगी। मैनचेस्टर में खेली जा रही 5 मैचों की श्रृंखला के दूसरे T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 191 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में 6 विकेट खोकर 191 रन बनाए। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए थे। जैकब बैथल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय महवश फातिमा। Prime Minister Narendra Modi inaugurated CG Semi state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test plant in Sanand, Gujarat. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Earlier, Prime Minister Modi inaugurated and laid the foundation stone for development projects worth over 1,05,000 crore rupees in Rajasthan. Addressing the program, the Prime Minister said the conflict in West Asia had triggered the biggest energy crisis of the 21st century, but India successfully overcame the challenge through timely decisions, effective diplomacy and prudent management of national resources.
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रात के इस पहर में। 1:11:04 हुए हैं। गीत सुहाने लेकर अंजलि है आपके साथ। गीत सुहाने उन गीतों की बहार आपके लिए जो सचमुच आपके दिल को सुहा जाए, आपके मन को भा जाए और आपके दिलो दिमाग पर छा जाए। कोशिश पूरी रहेगी रात के इस सफर में।

दिल की गहराइयों में कोई उतरी, मन मस्तिष्क में बनी तस्वीर में कोई संवरी, या फिर इसके उलट दिल में चुभे नश्तर पर कोई मरहम की तरह मुलायम एहसास बन जाए, या फिर दिल की चुभन, दर्द, कोई जख्म शब्दों के जरिए बाहर निकल जाए। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 अंजलि है आपके साथ। कुछ ऐसा रिश्ता है हमारा और उनका, कुछ ऐसा रिश्ता है हमारा और उनका, याद ना भी करें तो भुलाया भी नहीं जाता।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 इस वक्त गीत सुहाने के इस सुहाने से सफर पर अंजलि के साथ हैं आप। तेरी आंखों के ये जो काजल हैं, तेरी आंखों के ये जो काजल हैं, मेरी रातों के काले बादल हैं, और ये जुल्फ जो गालों को छूती है जैसे सावन की पहली हलचल है।

आंखों से जो उतरी है दिल में वो बात ही कुछ और है। आंखों से जो उतरी है दिल में वो बात ही कुछ और है। लफ्जों में बयां जो हो ना सके, लफ्जों में बयां जो ना हो सके, उस मोहब्बत की गहराई ही कुछ और है। और दिल वही सब तो ढूंढता है।

रात खामोश है, रोती नहीं, हंसती भी नहीं। काश एक बार कभी नींद से उठकर तुम भी मेरी नजदीकियों की इस खामोशी को सुन पाते।

ख्वाब चुन रही है रात, बेकरार है तुम्हारा होठ पे लिए हुए दिल की बात, हम जागते रहेंगे और कितनी रात हम।

कुछ इस तरह से तेरी और मेरी कहानी है, कुछ इस तरह से तेरी और मेरी कहानी है, छुपी हुई आंखों में कोई अनकही सी कहानी है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र केवल 27 महीने में तैयार हो गया। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रूपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल

0: नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। गृहमंत्री अमित शाह ने नई सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग सुविधा के उद्घाटन को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत का एक नया कदम बताया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि ये एक टेक पावर हाउस के तौर पर भारत की यात्रा में एक नया मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोबो सुबियंतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोबो सुबियंतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के लिए सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग की कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। ये एक व्यापक ढांचा है जिसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के माध्यम से मादक पदार्थों के उपयोग को रोकना है। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के पहले 5 दिनों में 1,45,00,000 मतदाताओं में से 32% से ज्यादा लोगों को गणना पत्र बांटे गए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भरे गए प्रपत्रों में से सिर्फ 1% से ज्यादा को ही डिजिटाइज किया गया है। मैनचेस्टर में खेली जा रही 5 मैचों की श्रृंखला के दूसरे T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 191 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में 6 विकेट खोकर 191 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय महवश फातिमा। Prime Minister Narendra Modi inaugurated CG Semi's state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test plant in Sanand, Gujarat yesterday. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Earlier, Prime Minister Modi inaugurated and laid the foundation stone for development projects worth over 1,05,000 crore rupees in Rajasthan. Addressing the program, the Prime Minister said the conflict in West Asia had triggered the biggest energy crisis of the 21st century, but India successfully overcame the challenge through timely decisions, effective diplomacy, and prudent management of national resources.
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: The monsoon session of the parliament will commence on the 20th of this month. It will continue till the 13th of August. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju informed that President Draupadi Murmu has approved the proposal of the government to convene the monsoon session of Parliament from 20th July. Mr. Rijiju said the session will focus on meaningful debate, discussion and decisions on issues of national importance. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will be on an official visit to Qatar, Bahrain, Kuwait and Oman from today till 10th of this month. During the visit to these countries, Dr. Jaishankar will be meeting with his counterparts and the leadership. Ministry of External Affairs said the

बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। रात सुरमई हो तो भला दिल में उमंगे क्यों ना उमड़े, समुद्र में उफनती लहरों सी दिल की आवाज सुने या दिल की तन्हाइयों से कुछ बात करें। ये सफर कुछ ऐसा ही रहेगा, एहसास जज्बात सभी रंगों में रंगे गीत पहुंचेंगे आप तक। सुनते रहें आकाशवाणी गोल्ड 100.1। अंजलि है आपके साथ।

0: समझ नहीं आता, इश्क है या इबादत अब समझ नहीं आता, एक तुम ही तुम नजर आते हो जहां तक दिल जाता है।
1: इतना काम, बीमार पड़ जाओगे। वैसे नाटक किस लिए?
2: तुम्हें ये नाटक नजर आ रहा है? मैं किसी को दिखाने के लिए ये सब नहीं कर रही हूँ, ये सच्चाई है।
1: इतने बड़े घराने की लड़की होकर ये सब क्यों कर रही हो? तुम्हारे एक इशारे पर सैकड़ों नौकर आकर ये काम कर जाएंगे, फिर ये दिखावा क्यों?
2: मुझे सफाई देने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें बताती हूँ। यूसुफ की माँ हमारे यहाँ नौकरी किया करती थी। बचपन में उसी ने मुझे पाला, माँ से ज्यादा प्यार दिया। जब उसकी अपनी बेटी जूनी मर गई तो वो नौकरी छोड़ के यहाँ वापस आ गई। अब जब भी मैं कश्मीर आती हूँ कुछ दिन उनके साथ बिताती हूँ, उनके लिए वही सब करती हूँ जो उनकी अपनी बेटी किया करती थी। इससे मुझे चैन मिलता है और एक तरह का सुख भी। मैं ये सब बातें तुम नहीं समझोगे, अब भी नहीं समझे आप।
3: मैं आरती हूँ, काजल की बेस्ट फ्रेंड। उसे नाराज करके आपने अच्छा नहीं किया। जानते हैं वो यहाँ सिर्फ आपके लिए आई है, बचपन से उसे जानती हूँ। बहुत जिद्दी है, अगर वो आपके लिए यहाँ तक आ सकती है तो आपको छोड़ के जा भी सकती है। आप खड़े खड़े देख क्या रहे हैं? अगर वो अभी चली गई तो आप जिंदगी भर तरसेंगे, पछताएंगे।
1: काजल, I'm sorry काजल, मैंने तुम्हें गलत समझा। काजल, मुझे तुमसे कुछ कहना है।
3: तो कहो।

तुम्हारी जुल्फों के साए में शाम हो जाए, तुम्हारी जुल्फों के साए में शाम हो जाए, तो इस जिंदगी का हर लम्हा तुम्हारे

दिन का हर एक लम्हा, रात की हर एक घड़ी बस तुम्हारी यादों की उंगली थामे गुजरती है। कुछ घड़ियां ऐसी होती हैं मोहब्बत में जहां ना वक्त का होश रहता है और ना दुनिया का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र केवल 27 महीने में तैयार हो गया। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रूपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। गृहमंत्री अमित शाह ने नई सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग सुविधा के उद्घाटन को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत का एक नया कदम बताया। सोशल मीडिया

0: पर एक पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि ये एक टेक पावर हाउस के तौर पर भारत की यात्रा में एक नया मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोबो सुबियंतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोबो सुबियंतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। ये एक व्यापक ढांचा है जिसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के पहले 5 दिनों में 1,45,00,000 मतदाताओं में से 32% से ज्यादा लोगों को गणना प्रपत्र बांटे गए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भरे गए प्रपत्रों में से सिर्फ 1% से ज्यादा को ही डिजिटाइज किया गया है। मैनचेस्टर में खेली जा रही 5 मैचों की श्रृंखला के दूसरे T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 191 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में 6 विकेट खोकर 191 रन बनाए। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक और विदर्भ में आज मूसलाधार वर्षा का भी अनुमान लगाया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय महवश फातिमा। Prime Minister Narendra Modi inaugurated CG Semi's state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test plant in Sanand, Gujarat yesterday. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Earlier, Prime Minister Modi inaugurated and laid the foundation stone for development projects worth over 1,05,000 crore rupees in Rajasthan. Addressing the program, the Prime Minister said the conflict in West Asia had triggered the biggest energy crisis of the 21st century, but India successfully overcame the challenge through timely decisions, effective diplomacy and prudent management of national resources.
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: The monsoon session of the parliament will commence on the 20th of this month. It will continue till the 13th of August. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju informed that President Draupadi Murmu has approved the proposal of the government to convene the monsoon session of Parliament from 20th July. Mr. Rijiju said the session will focus on meaningful debate, discussion and decisions on issues of national importance. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will be on an official visit to Qatar, Bahrain, Kuwait and Oman from today till 10th of this month. During the visit to these countries, Dr. Jaishankar will be meeting with his counterparts and the leadership. Ministry of External Affairs said the visit will focus on enhancing India's bilateral relations with the countries and also provide an opportunity to exchange views on regional developments and issues of mutual interest. Defence Minister Rajnath Singh highlighted India's significant progress in manufacturing and technology. The minister said, country's defence exports have reached a record of over 38,000 crore rupees. Addressing an event organized

स्वागत है आप सभी का हमराही कार्यक्रम में। आज आपके लिए संजोकर लाए हैं हम हमराही कार्यक्रम में वो युगल गीत जिसमें प्यार का मीठा एहसास है, जिसमें दो दिलों की कहानी है, एक दूजे में खो जाने की प्यार भरे दो दिलों की दास्तान है। इन युगल गीतों के साथ सजाकर आपके लिए लाए हैं हम हमराही कार्यक्रम। जी हाँ, और आज के हमराही कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं, आप ही की दोस्त रूपा धवन। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

जी हाँ, हमराही कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं आप। स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और सुन रहे हैं हम हमराही के जरिए मोहब्बत की कहानियाँ। जी हाँ, प्यार मोहब्बत से जुड़े हुए कुछ युगल गीतों को याद कर रहे हैं हम, जिन्हें आज भी हम दिल लगा कर सुनते हैं, जो आज भी हमारे जहन में समाये हुए हैं। चलिए सुनते हैं अगला ही नगमा हमराही कार्यक्रम में, और आज आपके साथ हूँ मैं रूपा धवन। वक्त हुआ है 3:23 और 17 सेकंड।

आज फिर तुमसे मुलाकात हुई, आज फिर तुमसे मुलाकात हुई, जैसे सूखी जमीन पर बरसात हुई। बातों में कुछ खामोशी भी थी, बातों में कुछ खामोशी भी थी, आंखों में लेकिन 100 बात हुई।

साथियों, प्यार के एहसास को शब्दों में बताना मुश्किल होता है। इस एहसास को सिर्फ दिल की धड़कनें ही समझ सकती हैं। सुनते हैं एक ऐसा ही दिलकश नगमा जिसके शब्द बहुत ही खूबसूरती से पिरोए गए हैं। फिल्म है आप आए बहार आई, और इसमें क्या महसूस कर रहे हैं दो दिल, आइए जानते हैं।

वाकई प्यार के एहसास को दोस्तों शब्दों में बताना मुश्किल होता है। इस एहसास को सिर्फ और सिर्फ धड़कने ही समझ सकती हैं। सुनते हैं अगला नगमा, ऐसा ही कुछ बेहद ही खास। इस नगमे को हम ले रहे हैं फिल्म मन मंदिर से, किशोर कुमार साहब की आवाज़ में।

हमराही में आप सुन रहे हैं उन युगल गीतों को जिन्हें आज भी हम सुनना पसंद करते हैं, बार बार गुनगुनाना पसंद करते हैं। तो चलिए सुनते हैं अगला गीत जिसे हम शामिल कर रहे हैं एक फूल दो माली फिल्म से।

दुनिया की रस्मों से चाहे कितनी भी दीवारें खड़ी हो जाएं, वक्त के थपेड़ों से चाहे राहें कितनी भी जुदा हो जाएं, पर जो रूह से बंधा है वो बंधन कभी टूटेगा नहीं। ये सच्चा प्यार है साहब, जमाने के आगे कभी झुकेगा नहीं।

और आइए अब आपको सुनवाने जा रहे हैं एक ऐसा गीत जिसे अपने पुरनूर आवाज से सजाया है लता जी ने और उनके साथ नरेंद्र चंचल जी ने। फिल्म दो शत्रु जिसके संगीतकार हैं आनंद जी, कल्याण जी आनंद जी, और सुनते हैं इसी खूबसूरत से गीत को।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र केवल 27 महीने में तैयार हो गया। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। गृहमंत्री अमित शाह ने नई सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग सुविधा के उद्घाटन को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत का एक नया कदम बताया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि एक टेक पावर हाउस के तौर पर भारत की यात्रा में एक नया मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियंतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

0: ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। देवघर में राज्य स्तरीय श्रावणी मेला 2026 की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक हुई। इसमें झारखंड और बिहार के अधिकारियों ने सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, ट्रैफिक कंट्रोल और आपदा प्रबंधन के लिए एक संयुक्त रणनीति को अंतिम रूप दिया। पहली बार कांवड़ियों के मार्ग पर रियल टाइम निगरानी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और 24 घंटे व्हाट्सएप आधारित मॉनिटरिंग नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाएगा। मैनचेस्टर में खेली जा रही 5 मैचों की श्रृंखला के दूसरे T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 191 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में 6 विकेट खोकर 191 रन बनाए। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक और विदर्भ में आज मूसलाधार वर्षा की भी संभावना लगाई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Mehvash Fatima. Prime Minister Narendra Modi inaugurated CG Semi's state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test plant in Sanand, Gujarat yesterday. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Earlier, Prime Minister Modi inaugurated and laid the foundation stone for development projects worth over 1,05,000 crore rupees in Rajasthan. Addressing the program, the Prime Minister said the conflict in West Asia had triggered the biggest energy crisis of the 21st century. But India successfully overcame the challenge through timely decisions, effective diplomacy and prudent management of national resources.
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: The monsoon session of the parliament will commence on the 20th of this month. It will continue till the 13th of August. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju informed that President Draupadi Murmu has approved the proposal of the government to convene the monsoon session of parliament from 20th July. Mr. Rijiju said the session will focus on meaningful debate, discussion and decisions on issues of national importance. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will be on an official visit to Qatar, Bahrain, Kuwait and Oman from today till 10th of this month. During the visit to these countries, Dr. Jaishankar will be meeting with his counterparts and the leadership. Ministry of External Affairs said the visit will focus on enhancing India's bilateral relations with the countries and also provide an opportunity to exchange views on regional developments and issues of mutual interest. Defence Minister Rajnath Singh highlighted India's significant progress in manufacturing and technology. The minister said that the country's defence exports have reached a record of over 38,000 crore rupees. Addressing an event organized by a private media organization in New Delhi, Mr. Singh said the sharp rise from 686 crore rupees in the financial year 2013-14 reflects an almost 57-fold increase and underlines growing global confidence in Make in India defense platforms. India's long-standing contribution to global peacekeeping mission received a significant recognition as 651 Indian Army personnel serving under the United Nations have been awarded the prestigious United Nations Medal during a ceremonial medal parade held at the permanent operating base Sake in the Democratic Republic of the Congo. The medals were presented during a ceremony honoring the Indian contingent.

जिसके भीतर अरुणिमा सा उजाला होता है, उसका हर रास्ता खुद ब खुद रोशन हो जाता है। जी हाँ, अरुणिमा यानी सुबह की लालिमा या उगते हुए सूर्य की चमक। अदब में साहस को समर्पित ये खूबसूरत सा नाम और अरुणिमा बनकर धीरे धीरे अंबर पर नया सवारा लेकर आ रही है वो रोशनी की किरण, और रात के हर अंधेरे को मिटाती जाएगी धीरे धीरे। स्वागत है आप सभी का अरुणिमा में, जहां आपके साथ हूं मैं, आप ही की दोस्त, आप ही की अपनी रूपा धवन। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार, सुप्रभात। आपकी यादों में रचे बसे हम और हमारी यादों में रचे बसे आप, तो ऐसे में क्यों ना एक गीत आपके नाम कर दिया जाए।

0: साथियों, अरुणिमा का ये सफर जहाँ धीरे धीरे रात गहराती है और सुबह की मध्यम रोशनी धीरे धीरे अपनी चादर तानने की तैयारी करती है, वहीं ठंडी हवा के झोंके कानों को सुकून देती खामोशी भी अपने पांव पसार लेती है। इस खामोशी में एक अलग ही एहसास है, ठहराव का। आइए इसे महसूस करें कुछ चुनिंदा गीतों के साथ। मेरे जीवन साथी फिल्म का ये गीत किशोर साहब की पुरनूर आवाज में आप सभी के लिए।
1: मुझे सारे गानी था, पा गा धा बा सा नी धा, मुझे कुछ नहीं आता। ये तो मानेंगे नहीं, हमारी जो जनता है ये सोच नहीं सकती। मैं मुझे कुछ नहीं आता।

साथियों, हमारा मन ही सबसे बड़ा हमारा मित्र भी है और शत्रु भी। जिसने अपने मन पर विजय पाली, उसका मन उसके लिए एक बेहतरीन मार्गदर्शक की तरह काम करता है। सकारात्मक विचारों और आत्मनियंत्रण से हम अपने मन को बेहतरीन सोच की दिशा में मोड़ सकते हैं। यकीन नहीं आता तो करके देखिए और फिर हमें बताइएगा। कहाँ पर? आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। फिलहाल आप जुड़े हैं अरुणिमा में रूपा धवन के साथ।

स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अरुणिमा के इस खूबसूरत से सफर पर, जहां आज आपके साथ हूं मैं, आप ही की दोस्त रूपा धवन। स्वीकार कीजिए एक बार फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार, सुप्रभात।

दोस्तों, जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो आधी जीत तो आपकी वहीं हो जाती है। जी हाँ, आप अपनी सोच से कहीं अधिक मजबूत और सक्षम हैं। हर नया दिन

अपने साथ नया अवसर और नई ताकत लेकर आता है। अगर आप मजबूत और सक्षम बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने आप पर यानी खुद पर विश्वास रखना होगा। जी हाँ, आत्मविश्वास ही एक ऐसी शक्ति है जो आपको निखारता है और संवारता है। अरुणिमा के सफर पर हम सुन रहे हैं कुछ गीतों को और बातें कर रहे हैं सकारात्मक सोच वाली। तो जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर, जहां आप हैं रूपा के साथ।

चेहरे से थोड़ा सा उजाला होने दे। सूरज को जरा शर्मिंदा कर रात का काला होने दे। जुल्फों को हटा

हमको पता ये तेरी जुल्फ है क्या, चूम ले मांग तेरी झुक सावन की घटा, ओ जो मौसम को पता ये तेरी जुल्फ है क्या, चूम ले मांग तेरी झुक सावन की घटा, जुल्फ

सनम मैं कोई वैर नहीं तेरी आंखों की कसम देखना राज न हो मेरे मासूम सनम मैं कोई वैर

कई बार ऐसा होता है कि जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं, यानी चुनौतियां, मुश्किलें जिनका सामना हम करते हैं, पर ये मुश्किलें हमारा रास्ता रोकने नहीं बल्कि रास्ता सिखाने के लिए आती हैं। बस हमें धैर्य से काम रखना होता है। वक्त चाहे कैसा भी हो बदलता जरूर है, बस हमें अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए कि हमारी मेहनत कभी ना कभी तो एक ना एक दिन तो जरूर रंग लाएगी। कारवा फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए लता मंगेशकर और रफी साहब की आवाज में।

समय हो चला है 4:44 और 35 सेकंड। आप हैं रूपा धवन के साथ अरुणिमा कार्यक्रम में। तो जनाब, हम बात कर रहे हैं आपकी और आपकी खुशियों की। जी हाँ, हमारा जीवन जो है ना, जो हमें मिला है, हमें उसके लिए अगर खुशी और शांति की तलाश है तो हमें सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि जो हमारे पास है उसका शुक्रिया मानिए और जो पाना है उसके लिए प्रयास कीजिए। अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, क्योंकि विचार ही आपका और हमारा भविष्य तय करते हैं। सुनते हैं मेरी जंग फिल्म का ये गीत अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में।

साथियों, हमने बात की खुशी और शांति की। खुशियां सिर्फ अपने लिए ही नहीं, सादगी तो उसमें है जब हम दूसरों की भी मदद करते हैं, और दूसरों की मदद करने से मिलने वाली खुशी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। जब हम किसी बेसहारा की मदद करते हैं या जिसे हमारी मदद की ज़रूरत हो, और उसके जो खुशी के पल होते हैं, आँखें बयां करती हैं उन खुशी के पलों को जब आप उनकी सहायता करते हैं। वो लम्हा अपने आप में एक छोटी सी कहानी कह जाता है। तो ऐसे खुशी के मौसम हम सबकी ज़िंदगी में आए तो उसके लिए हमें निरंतर प्रयास करने होंगे। आक्रमण फिल्म का ये गीत आप सभी के लिए किशोर कुमार साहब और लता जी की आवाज़ में।

कल को बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज को खूबसूरत बनाकर आने वाले कल को ज़रूर संवारा जा सकता है। अरुणिमा का सफ़र सिर्फ यहीं तक, अभी भोर सुहाने लेकर फिर से आपके साथ रहूँगी और अभी कुछ ही देर में आप सुनेंगे, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार। तब तक के लिए विदा दीजिए, रूपा को नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मृगनयनी पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि साणंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र केवल 27 महीने में तैयार हो गया। गृह मंत्री अमित शाह ने नई सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग सुविधा के उद्घाटन को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत का एक नया कदम बताया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि ये एक टेक पावर हाउस के तौर पर भारत की यात्रा में एक नया मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए प्याज की खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि संशोधित खरीद मूल्य से प्याज उत्पादक किसानों को बेहतर लाभ मिलेगा और साथ ही बफर खरीद प्रयासों को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार के मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड के माध्यम से प्याज की खरीद जारी है। देवघर में राज्य स्तरीय श्रावणी मेला 2026 की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक हुई। इसमें झारखंड और बिहार के अधिकारियों ने सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, ट्रैफिक कंट्रोल और आपदा प्रबंधन के लिए एक संयुक्त रणनीति को अंतिम रूप दिया। पहली बार कांवड़ियों के मार्ग पर रियल टाइम निगरानी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 24 घंटे व्हाट्सएप आधारित मॉनिटरिंग नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाएगा। आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज लंदन के लॉर्ड्स में

भोर सुहानी लेकर आई ठंडी हवा का झोंका, कलियों ने भी आंखें खोली, मिला नया एक मौका। चहक रहे हैं पंछी सारे, गूंज रहा आकाश, भोर सुहानी बिखेर रही है चारों ओर प्रकाश। हरी घास पर ओस की बूंदें चमकी बनकर मोती, भोर सुहानी बिखराए जग में सुख की पावन ज्योति। जी हाँ, रात का हर अंधकार मिटाकर, सब परेशानियां मिटाकर, नई उम्मीदों की रोशनी लेकर भोर सुहानी आ गई है। कुदरत का ये निराला रूप हम सबके जीवन में एक नए उजाले के साथ आया है और हमें प्रेरणा देता है आगे बढ़ने की। स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। बहुत सुहानी कार्यक्रम में आज आपके साथ हूँ मैं, आप ही की दोस्त, आप ही की अपनी रूपा धवन। सुप्रभात, नमस्कार। आइए स्वागत करें इस सुहानी सी भोर का और नाम लें उस प्रभु का जिसने हमें एक और नई सुबह दी, एक और नया दिन दिया।

सूरज की लालिमा धीरे धीरे अंबर पर छा रही है, सूरज भी धीरे धीरे अंगड़ाई ले रहा है। इस भोर सुहाने की सुंदरता कुदरत में किस तरह से समाई है, ये आइए जानते हैं इस गीत के माध्यम से, जिसे हम शामिल कर रहे हैं वासना फिल्म से, रफी साहब और लता जी के स्वर में।

किसी ने क्या खूब कहा है, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इसको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघला के बना ले इनको अस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। माना कि जब मुश्किलें आती हैं हमारे ऊपर तो हमें

हताशा तो होती ही है, लेकिन उस हताशा में से भी आशा की किरण छोटी सी कहीं ना कहीं से झांक रही होती है, जो उस समय हमें दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन हाँ, जब हम हिम्मत रखते हैं, धैर्य रखते हैं, तो उस आशा की किरण का दामन थाम कर हम आसान से उन मुश्किल राहों को पार कर जाते हैं। क्योंकि अगर एक अंधेरा है तो लाखों सितारे भी हैं हमारी ज़िंदगी को, हमारी ज़िंदगी की राहों को रोशन करने के लिए।

जो हमारे दोस्त अभी जुड़े हमारे साथ, तो आपको बता दें कि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये समय है भोर सुहानी कार्यक्रम का और इस वक्त समय हुआ है हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार 5:30:15। आप हैं रूपा के साथ। तो दोस्तों, भोर सुहानी जो है ना, भोर सुहानी हमारे लिए कुछ चुनौतियाँ भी लाती हैं, कुछ खुशियाँ भी लाती हैं। माना कि हर कदम पर एक नई ताजगी भी होती है और कुछ गहराई भी होती है, जी हाँ, जो पिछले दिन की यादों से जुड़ी हुई होती है। पर अगर लालिमा चाहिए है और हमारे लिए एक ऐसा संदेशा लाई है कि सूरज ने अंगड़ाई ली है और कुदरत में ऐसा रंग घुल गया है कि उस रंग में हमें भी रंगने का संदेश देती है भोर सुहानी, तो हम क्यों ना उसके रंग में रंगे। लबों पर हमें हंसी लेकर, आँखों में नए ख्वाब सजाकर, इस भोर सुहानी का खुलकर मुस्कुराकर स्वागत करना है और धन्यवाद देना है कि आज उम्मीदों के साथ हमें कदम बढ़ाने को एक बार फिर से भोर सुहानी हमारे साथ आई है, कदम से कदम मिलाकर। तो क्यों ना इस भोर सुहानी को मिलकर सब गाते हुए दिन की शुरुआत करें।